प्यारी पगल मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए मुकाबला तेरी।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, शान रह जाएगी सब धरी। इतरा नाना अपनी खोटी अठन्नी, शान रह जाएगी सब धरी। इतरा नाना अपनी खोटी अठन्नी पे, इतरा नाना जी रुक जाना, जरा मुस्काना, हमें थड़पा के सर।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, उन पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। पछताना ना

काटे बिखरे हुए बाल की सुखा आंचल छिले ना कभी, सुखा आंचल छिले ना कभी।

कहीं पसंद इसके बार हो गया पिया तेरा मेरा ओ पिया तेरा मेरा बस कहीं चुप चुप के प्यार हो गया पिया तेरा मेरा ओ पिया